0: अनुसार सुपट मूल्यमा बनाइन्छन्। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
1: आरएनला सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक टिकापुर एलएन मेडिकल अगाडि संचालक खुमराज सुनार। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9810625347।

0: के तपाईलाई थाहा छ?
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
3: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
2: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
4: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: उहाँ आपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकर्छु।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका दिवस 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै रडगैया झोला उद्योगमा विभिन्न डिजाइनका झोला सुगठ मूल्यमा पाइन्छन्। जस्तै स्कूल ब्याग, क्यारिङ ब्याग, लगेज ब्याग, फाइल ब्याग लगायतका विभिन्न डिजाइनका ब्याग अर्डर गरे अनुसार बनाइन्छ र पुरानो बिग्रेको झोला मर्मत गरिन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
5: रडगैया झोला उद्योग मुनुवा रोड टीकापुर कैलाली संचालक रामप्रसाद चौधरी।
6: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुरमा
7: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
6: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
7: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार
6: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637272।

0: छी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनऊ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हाना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उग्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्ति रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टीकापुर क्षेत्र में कर्णाली नदिया के किनार के सामुदायिक बनवा है लदिया के कटान करती कर्णाली लदिया गांव में पैठना गहती नागरिकों का चिंतित। टीकापुर में कीटजन्य रोग रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य कर्मी उपकरण तालीम। कीटजन्य रोग से बसना लामखुट्टे के टोकाई से बचे पन्ना डॉक्टर भीम प्रसाद सापकोटा के कहे। हिमालयन राष्ट्रीय मावी अमरावती के सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई। नव दुर्गा मंदिर टीकापुर में शांति दीप प्रज्वलन। और संकटी टीकापुर सड़क खंड में जंगली हथिया के देख पड़ल पास यात्रियों के सतर्कता रहना आग्रह। पूरा खबर टीकापुर में कीटजन्य रोग रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य कर्मी हुकरण अभिमुखीकरण करगिलवा। कीटजन्य रोग अनुसंधान तथा तालीम केन्द्र हेटौड़ा के आयोजन में टीकापुर में स्थानीय तह में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हुकरण के लग अभिमुखीकरण तालीम करगिले खो। तीन दिन तालीम में टीकापुर सहित के कैलाली के 25 जाने स्वास्थ्य कर्मी सहभागिता जनाइल बाटे। टीकापुर अस्पताल मालखेती लम्कीचुहा कैलारी नगर अस्पताल ओस्तखा घोड़ाघोड़ी कीटजन्य रोग अनुसंधान तथा तालीम केन्द्र हेटौड़ा के निर्देशक डॉक्टर भीम प्रसाद सापकोटा से कीटजन्य रोग रोकथाम केलक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी उपकरण सचेत रहना और जिम्मेवार बनेना तालीम के आयोजना करण बटोले बाटी। निर्देशक सापकोटा से तराई क्षेत्र में कीटजन्य रोग जोखिम बढ़ना रलकोर से जापानीज इन्सेफेलाइटिस के संक्रमण बढ़ती गये ओर से यही सब बसमा उपाय बारे नागरिकों का सचेत करना हो रोग समेत लाग जिले से उपचार में सहजता के लग स्वास्थ्य कर्मी उपकरण की क्षमता विकास में सहयोग पुगैना खोजती अलग बटवागिलवा। कीटजन्य रोग अनुसंधान तथा तालीम केन्द्र से टीम से बर्दिया के राजापुर दांग के खुराही रुकुम के आरबीस्कोट अस्पताल में स्क्रब टाइफस के स्थलगत अध्ययन करल बा। कीटजन्य रोग लामखुट्टे औसख भूसना लगायत के कटो पैल से इस बचना उपाय बारे नागरिकों का सचेत हुई पना आवश्यक रहा बटवागिल बा। सर सफाई के साथ ही लामखुट्टे के समेत से कटो पैना से बचना सकला से कीटजन्य रोग लग्न से बचे सकना सुझाव दिले बाटे। टीकापुर नगर पालिका के स्वास्थ्य शाखा संयोजक बलबहादुर रावल से कैलाली में कीटजन्य रोग के जोखिम रलक हो तालीम से चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी उपकरण के क्षमता विकास करलक बटोले बाटे। टीकापुर में संकटी जैना डगरा टीकापुर से संकटी जैना डगरा में भूराखानी सामुदायिक बनवा के बीच में जंगली हथिया देख पड़ल बा। स्थानीय से जंगली हथिया देखल पाछे जंगल क्षेत्र में यात्रा करना क्रम में हथिया देख के समय देखल बटोले बाटे। बनवा क्षेत्र में हथिया देखल पाछे सड़क प्रयोग करना यात्रुकरण विशेष सावधानी अपनाइना हो वन कार्यालय से फिर आग्रह करते आयल बा। नवदुर्गा मंदिर टीकापुर में दीप प्रज्वलन करगिल बा। जेनजी आंदोलन में शहीद तथा रसुआ बार में पर्के जान गुमायल व्यक्ति उकरण के समझना और घायल उकरण के स्वास्थ्य के लाभ की कामना करती मंगलवार की सांझ के मंदिर में दीप प्रज्वलन करगिले खो। नवदुर्गा मंदिर परिवार से दीप प्रज्वलन करलक बटागिल बा। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में टीकापुर तमाम क्षेत्र के नागरिक उकरा सहभागिता जनायल है। शंकर के टीकापुर के खड़क चौक में फे दीप प्रज्वलन करगिल बा। खोज खबर में आई गरी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: लो इतनी छिटो आमा बनने लागो तो
2: बैला भागन ना चावन जी अब तो था पाव दे चो सब समा बनी सब सकी न सकी सब काम करनु पर्छ तो गाड़ो हुन्छ अपनी काम करने विदेश जानु भएको छ के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन
1: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
0: टिकापुर नगरपालिका के समेत कर्णाली लदिया किनार के सामुदायिक बनुआ है। कर्णाली लदिया कटान करते रह पाच यहां के नागरिक हुकरा चिंतित बनल बात है। लदिया किनार में ध्यान बनुआ है। अबसम बरसात के समय में कर्णाली लदिया से कटान करते आयल बा। कर्णाली लदिया किनार में रलक सती कर्णाली सामुदायिक बनुआ भैरवनाथ बनुआ उत्सव संरक्षण समिति खोटेना भूराखानी सामुदायिक बनुआ रानी कर्णाली सामुदायिक बनो लगायत केही क्षेत्रमा आवश्य कर्णाली लदियासे कटान करते आयल बा। लदिया किनारमा रलक सामुदायिक बनवा है लदियासे कटान करते आयल पाछ यहाँ के बस्ती फे जोखिममा रहलक भैरवनाथ सामुदायिक बनवा के अध्यक्ष केशर बहादुर रावल जानकारी दिले बाटै भैरवनाथ बनवा संरक्षण समितिमा उपभोक्ता क्षेत्रमा आवश्य समेत नै कर्णाली लदिया के कटान करते आई रलक यी क्षेत्रमा स्थानीय से लैके प्रदेश हुईटी संघीय सरकार के फे समेत आंखी नई पुगलक नहीं हो। यहां पर प्रतिनिधि उक्राफे इस क्षेत्र के बार बार अवलोकन हो अनुगमन करते आयल बाटे मनोबा फे काम कुछ हुई नहीं सकलक अध्यक्ष रावल कहा। इस स्थान मन से कर्णाली लदिया से गांवलंग पैठना जसिन बाकल से टीकापुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 से लैके 9 सम लदिया यहां ठाव से 45 से छेटी पुगैना कहती आयल बा। एक साथी सती कर्णाली सामुदायिक बनुआ में फे अब लदिया कटान करती रलक बा। सती कर्णाली सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष जीतराम के अनुसार लदिया कटान नियंत्रण के लाख पहल कहती सरकार वाला सकु क्षेत्र हमकरण गुहार करलक मनुआ बसम फे कटान के लाख समेत नियंत्रण करना कलाक पहल नहीं हुईला को गांव बस्ती नहीं जोखिम में रलक अध्यक्ष जीतराम के कहा। एक साथे अब कर्णाली लदिया टीकापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 8 के बनगांव श्रीलंका उस्तक अर्नौ लगायत की क्षेत्र में फे कटान करती बा। एक सिर्फे कर्णाली लदिया गांवलंग पैठना खतरा बढ़ल कहती नागरिक चिंतित रहल बाट। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 अमरावती स्थित हिमालय राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय से सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम करलबा। कार्यक्रम में संबोधन करती जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 के वाड़ा अध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारी से घरी में विद्यार्थी उपकरण व्यावहारिक शिक्षा देना आवश्यक रहल बटोटियालबाट वहां शिक्षक उपकरण के समेत दोष देना से फे समेत अभिभावक सचेत हुई पन्ना बटोले बाट वाड़ाध्यक्ष भण्डारी शिक्षा में गुणस्तरीयता नई हुई सम विकास संभव नहीं हुईलक बटोले बाट पालिका की शिक्षा अधिकृत शंकर न्यूपानी से विद्यालय में आर्थिक स्रोत की कमी से समस्या हुई कहती अभिभावक से फे आपन बच्चा के अवस्था बारे में निगरानी कर पर्ना बटोले बाट विद्यालय के आर्थिक वर्ष 2082-83 के 1,27,18,725 रूपया आयव्यय प्रस्तुत कर गिल सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करती लेखा समिति के सदस्य विष्णु शर्मा से विद्यार्थी उपकरण के शैक्षिक कार्यक्रम के रकम न्यून रलकोर से बढ़ाई पर्ना उसक विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक सामग्री के प्रयोग बढ़ाई पर्ना सुझाव दिले बाटे। जनता आधारभूत विद्यालय के प्रधानाध्यापक तेग बहादुर सार्की सामाजिक परीक्षण से काल के लग योजना बनैना शिक्षा है गुणस्तर बनैनक लग मार्ग करना रलक ओर से ई महत्वपूर्ण रहल बटोले बाटे। कार्यक्रम में विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद अधिकारी अमरावती सामुदायिक बनवा के अध्यक्ष जमान सिंह साउत समाजसेवी बुद्धिजीवी जनक थापा भीम बहादुर राव लगायत से बोलल रहे। कार्यक्रम में बोलना वक्ता हुक्रा विद्यालय के गुणस्तर के लाख सकूस जाने आपन ठाउँ बसे लग्न आवश्यक रलकमा जोड़ दिले बाट शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष विनोद भण्डारी के अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में स्वागत शिक्षक मानसिंह चौधरी कर्लर हैं कलस्ते कार्यक्रम संचालन शिक्षक हर्क देवकोटा कर्लर हैं। टीकापुर स्थित खड्ग मेमोरियल सेकेण्डरी स्कूल कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी के रसुआ बारवन से प्रभावित परिवार के लाख 13,015 रूपया आर्थिक सहयोग करल बाट बाढ़ी पीड़ित ठुकरन के उद्धार राहत तथा पुनस्थापना में सरकार से कर्तिवलक प्रयास सहयोग पुगेन उद्देश्य से विद्यार्थीकरण स्वस्फूर्त रूप में रकम संकलन करके सहकर्लक में कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी विशाल रावल बटोले बाट विद्यालय के प्राध्यापक हिरण्य प्रसाद शर्मा से विद्यार्थीकरण के सहयोग है मानवीय तथा प्रेरणादायक काम के लाख प्रशंसकर्ल बाट खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाच फिर से सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
5: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी छड्के तिलरी रामलीला झुम्का पिजडा झुम्का बाला औठी पेण्डल चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
6: दुर्गा ज्वेलर्स बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली संचालक देव बहादुर सुनार सम्पर्क नम्बर 9868 40 16 60।
7: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
8: मैं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
8: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846477417।
9: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। हाल देशभर मनसूनी बाढ़ के प्रभाव रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। हाल मानसून की न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान आसपास बा जेकर प्रभाव से कोसी मधेश बागमती लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के सक्कु भूभाग तथा गंडकी और पश्चिम प्रदेश के समेत हिमाली पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलती बा। कलश गंडकी और पश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में आंशिक मौसम बदलती बा। कोसी मधेश बागमती गंडकी लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के कम स्थान में चत्यांग सहित मध्यम खाल के वर्षा हुईती रहल बा। हाल दोपहर के देशभर के साधारणतया मौसम बदलती बा। कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली भूभाग के कुछ स्थान तथा लुम्बिनी कर्णाली और सुर पश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग के कम स्थान में चट्यांग सहित मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना बा। बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में एक दो स्थान तथा कोसी कर्णाली और सुर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान में चट्यांग सहित मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना बा। सुर पश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में ढेर स्थान में समेत बाकी तराई भूभाग में कुछ स्थान में चट्यांग सहित मध्यम खाल के पानी पर्न बा। कोसी मधेश और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी और तराई भूभाग तथा बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमाली पहाड़ी और तराई भूभाग में एक दो स्थान में भारी से भारी पानी पर्न संभावना बा।
0: यह समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फेर से टीकापुर क्षेत्र में कर्णाली नदिया किनार के सामुदायिक बनुआ लदिया के कटान करती कर्णाली लदिया गांव में पैखना घटी नागरिक हुकरा चिंतित टीकापुर में कीटजन्य रोग रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य कर्मी हुकरान तालीम कीटजन्य रोग से बचना लामफुटे के टोकाई से बचे पड़ना डॉक्टर भीम प्रसाद सापकोटा के कहाई हिमालय राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय अमरावती के सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनवाई नव दुर्गा मंदिर टीकापुर में शांति दीप प्रज्वलन हो संकटी टीकापुर सड़क खंड में जंगली हथियार देख पड़ल पाछे या टुकड़न सतर्क रहना आग्रह बकलक थारू भाषक खोज खबर और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुना सकबी अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम सुनते भी।

0: चुनौली म आफ्ना बैरागले गाउँछु बैसाथ बनाउली
1: काटे सागो चुनक चुनक जुत्ता भड्कनाले मेरा साई पराया भया।

0: बादल आकाश आउँदो चट्याङ चुटुङ झरी मेरा जैथा दुख कहीं नहीं सारा यसै भरी
1: आधा स्वर्ग खम्पानी छ आधा स्वर्ग विदो मर्ने बाँच्ने

0: राम ई लड़का के कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल रही था कब्बू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक था
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपनी के मन की आवाज, समन्नत समाज के रक्षा में देसी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज की विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम छोट मिट की असला के बैठल सको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहतो मैं मिशन उमी के टेक मिनट के साथ भेटे बाबू रत्नापुर मगर संघारी को सिंधा हाल खबर बेलगलो कुशल मंगल आराम हुई मई एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई कना भरपूर आस में बाटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में व्यापार में यात्रा में जहां हुई भी जोन ठाव में हुई वह ठाव से हमारे कार्यक्रम में सहभागी जना सकनी। जस्ता कार्यक्रम आज हो कार्यक्रम म आज बुधा के दिन म अपने के रोजल खोजल सोचल मन परल थारू भाषा के कोई भी गीत सुनना मन हुई कल से हम कॉल करे बना रहा आज के दिन विशेष करके आज के दिन हम कॉल कर भी और कह भी मई गीत सुने चाहत हूँ। गीत मन पड़ना के बोल बतैबी स्पष्ट रूप में और गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म की हो सक भी तो नाम बतैबी और दुईठो कारण सहित एक जन के नाम ले भी कल से हमारे गीत अपने होकर सुना। तो जे जहां हुई भी कार्यक्रम में चाहे सहभागी जने भी चाहे यात्रा में हुई भी खेतों में हुई भी बारी में हुई भी दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजली में व्यापार में जहां हुई भी जोन ठाव में हुई भी दोपहर के समय अलसी समय है कुछ हदसम रमायलू करे कार्यक्रम के प्रतीक्षा में बैठल सक्कू रेडियो प्रेमी मैगर कबीला हुकरन चाहे मई पुनः स्वागत करती कार्यक्रम में मजा मजा गीत सुने नहीं बाटू। तो कार्यक्रम के शुरूआत में श्री गणेश का वेक्टर रमायलो गीत से गीत के पास मैं नहीं बाटू अपने डायल करते कर भी सुनने 95-61-255 के लाइन खुलाई बा तब समय एन्जॉय करी रमायलो करी गीत से गीत के पास मई आई नहीं बाटू।

इतनी मन सब तुहारे हो काहे कि तुम और जाने हो बिल्कुल रमाइलो गुजोली कार्यक्रम माई मिशन और मेके भाई साथ टेक्नो बैठ के बाबू रत्नापुर मगर और ये हो रेडियो टीकापुर FM 101 MHz उससे कि हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org और मोबाइल ऐप टीकापुर FM ऐप मार्फत उससे कि हमार जैसे हमारे पात्रों नेपाली पात्रों मार्फत पे सुनी सकती इंटरनेट के पहुंच रहल सगारी उरे अपने ठाव से तो जे जहां हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जनाबी जहां हुई भी जोन ठाव में भी कार्यक्रम में आई भी का नाम है जानकारी करती बाटो 091-5161-255 अर्थात 091-5612-55 कोई लाइन में आ रहा बोलकर हम हजूर राम राम ओके कोई टेलीफोन लाइन में नहीं हुई लागत में तो अपने उनके सही आइडिया कर भी हमारे स्टूडियो के लाइन में 091-5161-255 अर्थात 091-5612-55 लाइन एकदम खुला भा कार्यक्रम में सहभागी जनाइदी और कार्यक्रम में आईबी काल से अपने को हमारे रमाइलो गफ तो विशेष करके आज के दिन चाहिए अपने के मन परल थारू भाषा के कोई भी गीत यदि अपने मन परत हुई कल से हम कहबी मैं ये गीत सुने चाहत हूँ गीत के बोल बटेबे स्पष्ट रूप में और कहबी कि भाई ई एल्बम या फिल्म की हो सके तो नाम बता देबी और कहबी कि ई कारण से नहीं ई गीत मन परत और अंतिम एक जन के नाम ले भी मैं फलाने है सुनाए चाहत हूँ कि एक जन के नाम ले भी कल से हम लोग गीत अपने जरूर सुना तो डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाइते कर दी कार्यक्रम में अपने को हमार रमाइलो गफी का नाम है जानकारी करती बाटू फटाफट डायल करिए वो कार्यक्रम में सहभागी जनाई संगठन पूरे हमारे हरेक अथवार के सोमवार मंगलवार बुधवार बिहीबार हमारे चार दिन सम हमारे अपने के संगे रेगुलर ऐठी के एक पल अपने के संगे संगे रमाइलो कार्यक्रम और प्रत्येक दिन फरक फरक विषय वस्तु संगे संगे हमारे अपने के संगे गप करते तो ये दोपहरिक समय हो दोपहर के समय है अलसी समय है कुछ हद रमाइलो कार्यक्रम कार्यक्रम में सहभागी जनाइबी का नाम है अपने आज का तो जे जहां हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जनाइते कर भी कार्यक्रम में अटे कर भी का नाम है अपने जानकारी करम कार्यक्रम में भी तो मिस कल नहीं कॉले कर भी कॉल करके जा देवी बार बटा के जा देवी का नाम है अपने आज करम अनुरोध करम निवेदन करम कहते ही कार्यक्रम में फैन से खाब गीत जोरब गीत के पास मैंने बाटू डायल करते कर भी 091-5612-55 लाइन खुल

हजुर सिकना हेरो छैला प्यारो हो जाए बिल्कुलै रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोली आफ्नो हुकन खेला कार्यक्रममा बाटो माया मिशन और भर्खर रेडियो खरल बिगार से यो रेडियो टिकापुर एफएम 101.5 जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एच हाम्रो पात्र नेपाली पात्र मार्फत सुन्न सक्थे इन्टरनेट के पहुँच रहल सँगारे आफ्नै ठाउँ से तो जे जहाँ हुई भी कार्यक्रममा सहभागी जनाई भी कार्यक्रममा अपने कर हमारे रमाइलो गफी का नमाया पकन जानकारी करम विशेष करके अपने हुकन के संगे हमें रमाइलो बातचीत करना हो तो फटाफट चाहिँ डायल कर भी करीब करीब 1:45 बजे सम यात्रा कर भी अपने कर हमार रमाइलो गफ हुई का नाम है जानकारी कर करीब करीब 1:45 बजे सम हमरे संगे संगे यात्रा कर आप साथ में मजा मजा गीत संगीत सुना तो अफकोर्स चिति नै हिस्किसा कि मैफेन कौन कम मैफेन कार्यक्रम में सहभागी जनाई सकम मैफेन कार्यक्रम में आई सकम मैफेन कार्यक्रम में चाहिँ मतलब अपन रोजल अपन खोजल अपन सोचल गीत सुनाई सकम सुनी सकम कना सोच बना के कार्यक्रम में आई सकते तो डायल करते कर भी कार्यक्रम में कोयल बटे हजुर राम राम ओके वहां फेन शायद मिसकल नहीं काले करके जा देवी का नाम है प्रकन जानकारी करम विशेष करके अपने हुकन तो अपने हुकन सही कॉल करके कर भी कल से हमारे संगे गप करके जा देवी का नाम है जानकारी करना चाहम डायल करते कर भी सुनी 91 5612 5512 लाइन फुल फैंस एन्जॉय करे ठाउ गीत से गीत के बाद समय है नहीं बाटू डायल करते कर भी सुनी 91 5612 5512 लाइन खुलेगा

हजुर पूर्वैया सितरी बयाल मजा मजा गीत सुन्दै सुन्दै अति भएर के खेची व्यापारिक ब्रेक लिन बेला हो कि भन्दा मारे के खेची सर्ट कमर्सियल ब्रेक उड जाए ब्रेक के पाछ समय नै बाटू रेडियो छोड़कर कहते नहीं जेबी तर समय लग एक खेची व्यापारिक विश्राम विश्राम के पाछ समय नै बाटू डायल करते कर भी 091-5-61-255 लाइन खुलाई बा

0: कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटा का आज का कना हो बाबा फिर उस बाटी गटिलो ठाव से झोला आन लो लड़का सामान निहरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बरती रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिंठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरास गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
3: लो इतनी छिटो आमा बन लगो तो पढ़ने मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्यश्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्यश्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन
1: लाउन साह्रै भोक लाग्यो भने आज त तन्नै नास्ता गर्न मन लागिरहेछ होइन यो टिकापुर बजारमा मिठो चिकन राइस कहाँ पाइन्छ होला
2: साँच्चै हो र भोक लागेको मलाई पनि चिकन चाउमिन खान मन लागेको छ त्यसो भए जाऊ न लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरमा त्यहाँ त एकदम शुद्ध सफा र मिठो परिकारहरू पाइन्छ
1: ए हो र त्यसो भए जाऊ न जाऊ सँगै जाऊ तन्नै खाएर आउला
2: तपाईलाई पनि नास्ता खान मन छ भने लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरलाई सम्झिनुहोस् लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरमा चिया नास्ता चाउमिन चिकन राइस चिकन चाउमिन छोला समोसा दुध दही घिउ चिसो लगायतका विभिन्न किसिमका खाजाको आइटम पाइन्छन् एकचोटि सेवा गर्ने मौका दिनुहोला
1: लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घर सामुदायिक एफएम नजिकै प्रोप्राइटर लोकराज खनाल सम्पर्क नम्बर 9848569964
2: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछे शुरू करल मने घर सिजार सेक्ल
3: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
2: मिस्तरान बर्जना हो कना घर हेरो ना कटा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाका टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए तो था पाए
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426
1: हजुर बिल्कुल लम्बा व्यापारिक विश्राम के पास फैन से स्वागत बा पुनः स्वागत बा अपने होगा और कार्यक्रम में कोई टेलीफोन लाइन में घंटी बजा सकले बात है कमनी से मैं वहां स्वागत करती बात क्यों कहां से हमारे टेलीफोन लाइन में आगे बात है मैं बोल करना चाहम हजुर राम राम
5: हजुर राम राम
1: सीताराम दहित जी हो
5: हजुर
1: कसिन बा सीताराम जी हाल खबर
5: बढ़िया बा सीताराम दहित के हाल खबर
1: कौजा करती बाटी आजकल कसी के चलती बा दिन कठेक पानी परत कठेक घाम लागत
5: दो तीन दिन हो गए पानी ना तो घाम बा
1: भाई घाम बा की सितर बा हवा चलती बा की नहीं
5: हवा चलता है पर घामे बा
1: ओके और बताई भदौ महीना फिर लगभग लगभग हमारे अंतिम अंतिम हफ्ता और आएगी बाटी कैसी बा अपने के व्यापार बट्टा
5: व्यापार तो आप दुकान से शिक्षा लेटर बा दुकान तो आप चलती बा कर
1: चलती बा नहीं
5: हजुर
1: ओके कार्यक्रम में सहभागी जनैली एकदमै खुशी लागल आज चाहिँ हाम्रो अपने हे एक ठो गीत सुनाब अपने चाहिँ कोन गीत सुनबी हमन बताए पड़ल
5: मैं फुन्ना रुमाल चुप्प से रुमाल दे हो फुन्ना रुमाल
1: ओके गीत हाम्रो जोराब अपने के लागि गीत मन पर्ना के दुई ठो कारण बताए काहे गीत अपने हे मन परत
5: ये गाना बर मन परत जो आप सुनती मजा लागत गाना
1: सुनती मजा लागला कारण गिल हो
5: सुनते का मजा लागत गाना से बढ़िया था पर मजा लागत सुना थी गाना
1: ओके आपने फुन्नाहा रुमाल तो नहीं किहनो से पहली या डेली
5: आप पहनू नहीं पहनू आप तो पहले कहानी सब दिशा दर्नू
1: ओके कार्यक्रम में सहभागी जन ली आई गीत आपने किहन सुनाई भी एक जनहन के नाम लिए
5: ये हमार बासगढ़ी अंकल है भक्कू राम अंकल ही सुनाई चाहते हो भक्कू राम अंकल बासगढ़ी
1: ओके अब एक बीता हुई हमारे राम राम
5: राम राम
1: वहाँ फोन करे सीताराम दहित रमाइलो गफिल वहाँ से फुनहा रुमाल गीत सुनना मन लागल बाटे फुनहा रुमाल गीत गीत के पाछे मैं अपने हुकन संगे फैन से हम अपने हुके फे अपन रोजल खोजल सोचल और मन परल गीत सुनना मन हुई कर से कार्यक्रम में सहभागी जनाई सुन 91.5 61.2 पर सुनने के लाने एकदम खुला बा तो ये जोड़ी गीत के पास मैंने बाटू डाल करते कर भी सुन 91.5 61.2 पर सुनना लाइन खुलेगा

हजुर मैया के पहुरा साली भाटु गोंडरी बुनाई टू गोंडरी बुनाई टू रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोड़े कार्यक्रम में लव लव कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लगल टाटा बाबे के जना बेला हो गई हमारे अठारह बटल संग रेडियो सुन के साथ लोग धन्यवाद कल करके साथ अपने सबको धन्यवाद टेकमे बैठ के साथ बाबू रत्नापुर मगर है देव तो धन्यवाद देती अंतिम एक ठर रमाइलो गीत छोती और कार्यक्रम में भेटना बाचा करती मैं मिशन आ गया था हम राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास शुभ रहे रेडियो टीकापुर एफएम सुनते कर भी।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटरा हो त
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 वो 98 6 56 92 0 26
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साड़ी सुट कुर्ती पलाजा तथा थानका कपड़ाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन् एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला
3: एल्विस एल्विरा टेरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपर मार्केट अगाडि टीकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 98 11 67 38 87

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजेक 5 बजेक थारू भाषा खोज खबरमा आफ्नो कन स्वागत वा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौक राब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो मफे सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर में चोरी के घटना बढ़ती, चोरी करना उद्देश्य लेकर ब्लक नंबर 6 में दुईठो घर में तोड़फोड़। पैलाली बहुमुखी कैंपस के विद्यार्थी बनैला आभा हर्बल साबुन और मोमबत्ती बिक्री करना तैयारी। सार्वजनिक पदाधिकारी हुक्र पैना उपहार राज्य कोष में दाखिला कर सर्वोच्च के आदेश और टीकापुर नगरपालिका के वड़ा स्तरीय भू उपयोग योजना तैयारी के विषय में छलफल। टीकापुर में चोरी के घटना बढ़ लागल बा। टीकापुर में घर मालिक निहुल घर तोड़फोड़ करना चोरी करना घटना दैनिक रूप में बढ़ती गई बा। टीकापुर के विभिन्न ब्लक मन घर तोड़फोड़ कर चोरी हुई लगलग हो। कुछ दिन आग ब्लक नंबर 6 में दुईठो घर तोड़फोड़ कर चोरी के प्रयास हुई बा। ब्लक नंबर 6 स्थित हेमराज गेमाली व कल्याण दाहाल के घर तोड़फोड़ हुई बा। चोरी के लग आईलक हुक्र घर के ढोका दराज लगायत के सामान तोड़फोड़ करना के संग सामान छरफस टफरलक हेमराज गेवाली के भैया यज्ञ प्रसाद गेवाली जानकारी देलाबाट काम के सिलसिला में घर बाहर रहलक मौका पार्क स्वन चांदी व नगद चोरना उद्देश्य लेके ऐलक चोर नगद लगायत के कुछ सामग्री लैगिल से फे घर के अन्य सर सामान नई लैगिलक वहां के कहाईबा। टोलमन चोरी के घटना हुई लागल पाछ स्थानीय तरसी ठुलबाट स्थानीय मैसरा टमटा चोरी के घटना से त्रास बढ़लक उसे प्रहरी गस्ती बढ़ैना के संग सुरक्षा दिएपना माकलबाट अधिकांश घर में महिला व बाल बच्चा कलहक बैठ। स्थानीय ईश्वरी स्वर्णकार दैनिक चोरी के घटना हुई लगलग से तनाव बहलक बटुल बाट। स्थानीय गायत्री गेवाली घर मन चोरी के घटना हुई लगलग से समस्या बहरलक अभिभावक घर बाहर जैबे डर बहरलक से सुरक्षा चहलक बटुल बाट। और महिला मीना गेवाली फे चोरी के घटना बढ़ल पाछ ब्लक नंबर 6 व 7 मन गस्ती बढ़ाईपना माकल बाट। इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर घर तोड़फोड़ हुई लग से घटना में संलग्न के खोजी व अनुसंधान हुई तिरलक बटवा। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 के वडा स्तरीय भू उपयोग योजना तयार कर आवश्यक मापदण्ड व आधार निर्माण के लाग वडा स्तरीय प्रारम्भिक छलफल हिलबा। सरकार के भू उपयोग योजना बिना जग्गा के कौनोफे कारोबार कर निमिल नाकैकन कराई करल पाछ जग्गा वर्गीकरण के मापदण्ड तयार कर सरोकारवाला हुक्रबीच छलफल शुरू करगिल वडाध्यक्ष मोहन लोहार बिक बटुलबाट। वडाध्यक्ष बिक नेपाल सरकार के भू उपयोग एन 2076 व भू उपयोग नियम 2079 अनुसार जग्गा हाथ 10 प्रकार के वर्गीकरण करलक तर टीकापुर नगरपालिका आबसम्म वर्गीकरण निकरलक वर्षे वाकर वर्गीकरण करपना बटुलबाट। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 की आयोजना में हुईलक छलफल में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मालपोट कार्यालय के प्रतिनिधि टोल विकास संस्था के प्रतिनिधि लगायत अन्य सरोकारवाला हुकन के सहभागिता रह। छलफल में सहभागी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हुक्र तथा सरोकारवाला हुक्र भू उपयोग योजना बनाईबेर जग्गा धनी मर्का निपर नाकैकन योजना बनाई सुझाव दिल यी प्रारम्भिक छलफल हुईलक से यी से पाछफे जग्गा वर्गीकरण के विषय में छलफल हुईना बा। वडा नम्बर 1 से शुरू हुईलक छलफल अन्य वडा मफे करना व कंसल्टेन्सी के करना व वाकर पाछ फेर ओस्तकन छलफल हुईना जग्गा वर्गीकरण के काम हुई तिरलक शर्मा कंसल्टेन्सी के प्रतिनिधि दीपेन्द्र प्रसाद जैसी जानकारी दिलबाट। कैलाली बहुमुखी कैंपस के विज्ञान संकाय के विद्यार्थी वनस्पति जन्य कच्चा पदार्थ फरेकर्क हर्बल साबुन और मोमबत्ती उत्पादन कलबाट। कैंपस के विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न वनस्पति से आवश्यक कच्चा पदार्थ तैयार कर्क वाकर प्रशोधन मार्फत साबुन तथा मोमबत्ती उत्पादन कलफिट। कैंपस विद्यार्थी प्रयोगशाला में सैद्धांतिक ज्ञान और प्रयोगत्मक अभ्यास में सीमित निधिक उही उत्पादन और उद्यमशीलता से जोड़ना उद्देश्य लेकर असीन अभ्यास शुरू कलक जनैलबा। उत्पादन प्रक्रिया में प्राध्यापक हुकन के मार्ग निर्देशन तथा चौथो सेमिस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी उनकनके प्रत्यक्ष सहभागिता रह। विज्ञान संकायकी विभागीय प्रमुख उप प्राध्यापक डाक्टर रमादेवी जोशी के अनुसार साबुन तथा मैनबत्ती उत्पादन के लाग स्थानीय तथा वनस्पति जन्य स्रोत से कच्चा पदार्थ तयार करगिलक हो। क्याम्पस के प्रयोगशाला में विभिन्न वनस्पति से आवश्यक पदार्थ प्रशोधन करना के संग मेन्ठा के तेल समेत उत्पादन करके साबुन में प्रयोग करगिलक वहां बटुलवा विद्यार्थी उत्पादन कलक साबुन के नाम आभा ढैगिलवा साबुन मन नीम एलोवेरा लेमन ग्रास मूलतानी मिट्टी भिटामिन ए सी ई ओ के रिथा सोप बेस तथा सुगंध के लाग प्रयोगशाला मन तैयार करगिलक मेन्था के तेल प्रयोग करगिलवा प्रयोग करगिलक डाक्टर जोशी जानकारी देलबाट। क्याम्पस के अनुसार साबुन के गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा बिक्री के लागि आवश्यक अनुमति प्रक्रिया के लाग नमूना काठमाडौँ पठाइगिलबा गुणस्तर परीक्षण तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा हुइल्पा छ। उत्पादन व्यावसायिक रूपमा बजारमा लैजिन तयारी क्याम्पस के बा। खोज खबरमा एकगरिक विश्राम विश्राम पाछै निनीबाटी सुन्ती रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ। प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: सुन्नुहोस् न, यसपालि तिजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
5: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
4: अब किन टाढा जानु, सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
5: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
4: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
5: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
4: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
5: सुनको चमक आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
3: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
5: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा सञ्चालक रूपलाल सुनार सम्पर्क नम्बर 9805943893।
6: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
6: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
7: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
6: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
7: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
6: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
7: ईसीजी सेवा,
6: डिजिटल एक्सरे सेवा
7: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
6: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-73। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
8: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने,
2: बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होस् या गाडी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
9: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भोटे कोशी बाढ़ी प्रभावित हुकनके तत्काल व्यवस्थापन, सड़क यातायात सञ्चालन सहित पुननिर्माण औ पुनस्थापना लगायतका काममा तीव्रता दिए सरकारके ध्यान आकर्षण करैलबाट। वहाँ भौगोलिक विकटता ख्याल कैकन सड़क यातायात सञ्चालनमा क्षमताले नै भेलसे भारे बेली ब्रिज सहितके पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायके सहयोग समेत लिए सुझाव देलबाट। सँग वहाँ जलवायु परिवर्तनके कारण नेपाल व्यवहार पलक क्षतिके क्षतिपूर्ति पैनाकैक प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष आवाज उठाइपना सुझाव फेदेलबाट। राष्ट्रपति पौडेल परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लामसालसे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा अलगलगल छलफल कैक सड़क यातायात सञ्चालन एवं बाढ़ी पीड़ित के बसोबास के लाख होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन के काम तीव्रता देह आग्रह कलबाट। वहाँ आफ्ना बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र के स्थलगत अवलोकन के क्रममा पीड़ित के अवस्था व बाढ़ी से पुगागिलक क्षति देखलक उल्लेख गर्दै बसोबास व क्षतिग्रस्त संरचना के पुननिर्माण काम हुन अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन सोच के संग आग बढ़ाई पर्नामा जोर देलबाट। राष्ट्रपति पौडेल बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र के आज जनजीवन सहज और सरल बनाई तत्काल काम प्राथमिकता दिए आग्रह कलबाट। मन्त्री खनालसँग के भेटमन प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुन सिंह केसी व प्रधान सेनापति अशोक राज सिगडेल सहभागी रह ऊ अवसरमा मन्त्री द्वै दशे आग नै सड़क यातायात पूर्ववत सञ्चालन गर्न तथा बाढ़ी प्रभावित नागरिकके बसोबासके लागि अस्थायी तहरा निर्माण कर सेक्ना दिनरात कर सेक्नाकै दिनरात काम हुइतिरलक जानकारी करैलबाट। वस्तका मन्त्री हुक्र वैकल्पिक सड़क निर्माण काम हुन सरकार तीव्रता देलको लम्मा लम्मा बेली ब्रिज केलाग मित्र राष्ट्र हुकनसे आग्रह करतीरलक तथा ऊ सामग्री ऐनाक्रममा रहलक अन्य आवश्यक योजना सरकार आग बढ़ैलक जानकारी राष्ट्रपति हेन करैल रहल। सर्वोच्च अदालत आबसम्म नेपालकी सार्वजनिक पदाधिकारी हुक्र शिष्टाचार के रूपमा पहिलक सक्कु उपहार के एकमुष्ट विवरण तयार गर्क सार्वजनिक कर सरकार के नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी करलबा। सार्वजनिक पदाधिकारी हुक्र विभिन्न भेद तथा विदेश यात्रा के बेला प्राप्त कलक उपहार सरकारीकरण करपना माग धर्क डायर करगिलक रिट निवेदन उप सुनवाई करती सर्वोच्च अदालत सक्कु सार्वजनिक पदाधिकारी हुक्र पहिलक उपहार के एकमुष्ट विवरण तयार कर ओ वेबसाइट वा और माध्यम से सार्वजनिक कर आदेश देलख। संसदीय स्वतंत्रता कटी कानून बनाई निर्देशनात्मक आदेश जारी कर अस्वीकार कलक सर्वोच्च अदालत सार्वजनिक पदाधिकारी हुक्र प्राप्त कलक उपहार के विवरण निश्चित अवधि मन नियमित रूप मन सार्वजनिक करना व्यवस्था मिलाई निर्देशनात्मक आदेश देलख। न्यायाधीश हुक्र डाक्टर मनोज शर्मा व निरपधोष निग्रौला के इग्लास से उपहार के विवरण संबंधित निकायमा पेश निकना पदाधिकारी कन कानूनी दायित्व निर्धारण कर फे निर्देशनात्मक आदेश देखिलवा। सार्वजनिक पदाधिकारी उपहार अपनह ढर चहलसे उपहार के वर्गीकरण करक न्यूनतम रकम ट्वाक उपहार अपनह ढर चहना मन कर योग्य आय हुइना नै हुइना निक्रियल कर व न्यूनतम रकम से फे बढ़ी के उपहार ढर चहलसे सरकार से खरीद करपना कानूनी व्यवस्था के कार्यान्वयन कर फे सर्वोच्च अदालत आदेश देलक हो। पलमानपुर सब स्टेशन के ट्रान्सफर्मर खराबी आइलपा छ। सब स्टेशन से विद्युत उपयोग करतीरलग विभिन्न क्षेत्र मन विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिल्बा। राजापुरकी स्थानीय तीन दिन थेसे पर्याप्त भोल्टेज नै पुगबेर समस्या हुइलक गुनासो कलबाट। स्थानीय के अनुसार कम भोल्टेज के कारण मिल संचालन हुइनी स्याकल हो। मिल निचलबेर कुटाई पिसाई करनी से गिलक ढूलो चामल किन पर्लको अवस्थाईलाई खुक्र बटुलाबाट तीन दिन बीत स्याका बेरफे समस्या समाधान हुइनी सेक्लक बटुटी स्थानीय विद्युत पदाधिकरण लापरवाही कर्तिरलक आरोप लगैलाबाट पलमानपुर सब स्टेशनमा इलेक्ट्रिकल सुपरभाइजर सन्दीप चौधरी के अनुसार सब स्टेशनके ट्रान्सफर्मर समस्या अल्पाछ आंशिक लोडमा विद्युत आपूर्ति करपना अवस्था आइलख हो आब अन्य सब स्टेशन से व्यवस्था कर विद्युत आपूर्ति कर्तिरलक वहाँ जानकारी दिलाबाट खोज खबरमा फेरफे विश्राम विश्राम पाछैनी निवाटी सुन्दिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
4: दिदी तीज पनि आउन लाग्यो यसपालिको तीजमा नयाँ गहना किन्ने सोच छ कि छैन
10: छ नि बहिनी तर राम्रो राम्रो डिजाइन र विश्वासिलो पसल खोज्दै थिए नि
11: त्यसो भए इन्द्रेणी ज्वेलर्समा जाउँ न त त्यहाँ सुनचाँदीका नयाँ नयाँ डिजाइनका गहना पाइन्छन् रे
10: ए हो र बहिनी अरू के पाइन्छन् त त्यहाँ
11: त्यहाँ त माइली तिलहरी छटके तिलहरी रामलीला झाला पिटरा झुम्का बाला एक आनामा एक जोडी चुरा बबी औठी बेरुवा औठी पेन्डल एकदेखि चार आनासम्मका नौगेडी हारहरू चन्द्रमा मोती चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहना बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छन् नि
10: ओहो बहिनी यति राम्रो सुविधा अब हाम्रै टिकापुरमा रहेको छ अनि मूल्य र गुणस्तर कस्तो छ नि
11: उचित मूल्य राम्रो गुणस्तर अनि विश्वासिलो सेवा नै त्यहाँको विशेषता हो
10: त्यसो भए ढिलो नगराउन बहिनी आजै जाऊ
11: ल जाऊ तपाईँहरू पनि आफ्नो रुचाइको गहना किन्न इन्द्रेणी ज्वेलर्समा नै आउनुहोस्
4: इन्द्रेणी ज्वेलर्स बलभद्र चौक टिकापुर कैलाली सञ्चालक रन बहादुर सुनार सम्पर्क नम्बर 9848440019
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
12: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फेमिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
9: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
12: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
9: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
12: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
9: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
12: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
9: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
12: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
9: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
12: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
9: सम्पर्क फोन नम्बर 9868800008 र 9825637772
13: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
14: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
13: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
14: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
13: अब त म ढुक्क
15: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरा पारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भार
14: मोबाइल नम्बर 9848541 43 26 जमरा पारी टिकापुर कैलाली
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा विश्व हिन्दू परिषद नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशकी आयोजनामा तेस्रो दिन रक्तदान कार्यक्रम हुल्बा मानवीय सेवाकै भावना सहित आयोजित कार्यक्रममा 16 महिला ओ 34 पुरूषकै 50 जना रक्तदान करलबाट कार्यक्रममा 8 जना जीवनमै पहिलो चो रक्तदान करलबाट रक्तदान प्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक सेवामा योगदान पुगैना उद्देश्य लिएर आयोजना गर्ल कार्यक्रममा उत्साहजनक सहभागिता रह जेएनजी आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गुमेलक शहीद हुकनकै सम्झनामा निसर्ग हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर दीप प्रज्वलन कर्लवा हस्पिटल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा शहीद गौरव सोही जोशीकै परिवार हन 3,51,000 रूपियाँ आर्थिक सहयोग समेत कर्लवा परिवर्तन सुशासन ओ उज्जवल भविष्यकै आकांक्षा सहित गैलक भदौ 23 गते हुइलक जेनजी आन्दोलन के क्रम ज्यान गुमैलक ज्ञात अज्ञात सहित हुकन के स्मरणमा आयोजना कार्यक्रम आयोजना करगिलक हो। कार्यक्रममा प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त, नागरिक समाजकीय गुवा प्रमोद पाठक, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष पुष्कर ओझा सहित गौरव जोशी के दाई, गुन्ना जोशी, निसर्ग हस्पिटल के अध्यक्ष तीर्थराज पन्त लगायत चिकित्सक तथा हस्पिटल के कर्मचारी हुकन के सहभागिता रह। कार्यक्रम के क्रम में निसर्ग हस्पिटल के ओरसे सहित गौरव जोशी के दाई, गुन्ना जोशी हां 3,51,000 रूपया के चेक हस्तांतरण करगिलक हो। हस्पिटल के अध्यक्ष तीर्थराज पन्त, बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदीप मिश्र ओ प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त संयुक्त रूप में गुन्ना जोशी हां चेक हस्तांतरण कलक हुई। यह समाचार के संग खोज खबर और आयल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर मन चोरी के घटना बढ़ती, चोरी करना उद्देश्य लेकर ब्लक नंबर 6 2 ठो घर मन तोड़फोड़। पैलाली बहुमुखी कैंपस के विद्यार्थी बनैला आवा हर्बल साबुन और मैनबत्ती बिक्री करना तैयारी। सार्वजनिक पदाधिकारी उग्र पैना उपहार राज्य कोष में दाखिला कर सर्वोच्च के आदेश और टीकापुर नगरपालिका वड़ा स्तरीय भू उपयोग योजना तैयारी के विषय में छलफल। लीता बक्ला थारू भाषा खोज खबर अत्र 6 बजे नेपाली भाषा मन खोज खबर सुन सकी। अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती। मई गीताफी विदाई दी। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि। राम राम।
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टीकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
5: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पुर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
3: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा, सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी, सम्पर्क नम्बर 9868551000।
14: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? 500 सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
16: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कही ना हो का
14: मिस्तरान वर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई ये गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए तो था पाए।
17: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
18: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
19: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: हेलो
1: साइली, के छ तिम्रो हालको?
0: ठिक छु। हजुर,
1: मलाई साह्रै तिमी याद आउँछ साइली।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरा पारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिपर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
5: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
6: संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: कार्यक्रम मझेरी मझेरी मझेरी।
1: भैया ना करा रेडू बिगरी
2: नहीं का मम्मी टी कपूर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आयता वो प्रतिभा सुनाई लगाई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: कार्यक्रम मझेरी मझेरी मझेरी।
1: भैया न करा रेडू बिगड़ी
2: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: कतै भूख छ,
2: कतै बाढी,
3: कतै पहिरो,
4: जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा चोट पार्छ गहिरो,
5: त्यसैले वृक्षारोपण गरौं, जंगल बचाऊ, भूक्षयबाट जमीन जोगाऊ।
6: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।